0: नया नेपाल को नया रेडियो
1: रेडियो बिहानी 97.6 मेगाहर्ट्ज
2: रेडियो कार्यक्रम जीवन को वचन हो।